भैया कि दादा मेरे कि मुस्को डोला कि बीमारी बाजे कि जीस तुरो टारवी लगा सी गिला पे हाथ टारवी लगा सी गिला पे हाथ।